0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: Studio time.
4: It's 7 a.m. बिहानको 7 बजे.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंडू.

0: दमकल एम्बुलेन्स को फोन नम्बर जुनसुक समय में चाहन सन टपार वा सबले देखने
1: सार्वजनिक हित का उज्यालो को अनुरोध।

उज्यालो रेडियो नेटवर्क दिथि एफएम स्टेशन अनलाइन पाखे हलिङ्क छक्ल प्रसारण जियाचुङ सुथस्य चिताय नेपाल भाषा बुखे प्राविधिक पास प्रवीण श्रेष्ठ लिसेन्जी सर्ण राजोपाध्याय चुजलपा।

0: थोनिमेसिया छता एलनसी नापांगु चलनिया निर्वाचन पार्टी सभापति र केन्द्रीय दुजाय उम्मेद्वारी मनोनयन लागि निर्वाचन आयोग सम्पर्क जाकुथी पाके फारन वितरण शुरू याप तयारी चुकुदु अथे निमेसिया नीता एलनसी पेता इतक उम्मेद्वारी मनोनयन पत्र दर्ता यही हंस बनी च्यापा
1: न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू।

0: लुलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचे सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दूसरको एक बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोनू तुतुन नगर पालिका 5 सोनू कुंबू

0: 桜島ください。
1: सुरुंजुन देशी सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भईरह निर्माण कार्य क्रम में मतलब सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहकर तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में घासपात काटना गाई बस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत करने संपूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना होने इस सूचना मार्फत अनुरोध कर अनावश्यक रूप में न जानु आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुनील जुन बेस्टी उपभोक्ता समिति
2: यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनजन्य हिंसा को जोखिम में हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीभाई परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बाल बालिका को चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बाल बालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौं।
3: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय खोजी प्रदेशद्वारा जनहितमा

0: सत्तावीं सर्वाधिक बिक्री हुई। अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चेतना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ भरपर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भैर
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्तल बजारबाट फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880022 र 9842880300

0: उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गरौं। घुणस्तरी वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारको रक्षा गरौं। कारोबारमा बिल विशोक लिने र दिने गरौं। कारोबारलाई पारदर्शी बनाऊ। नफाको उद्देश्य झुटा भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना बनाऊ। वस्तु सेवाको मूल्य मात्रा म्यासकी नीति गुणस्तर एकिन गरे मात्र खरिद बिक्री गरौं। वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। वस्तु तथा सेवाको प्रयोगबाट स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति मागौं। निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: Hesta, hesta, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

छोड़िएगा घूम जानूंगा पाठ भालू बैरा हाथी जितना पसे पाछी तरह जन को छेती हुन्छ चुपचाप बसे पाछी।

निजी स्रोत में महिला शिक्षित आवश्यकता संबंधी सूचना इस गार में माध्यमिक विद्यालय में क्लासरूम्स इन द क्लाउड मिसाल को अनुदान तलब भत्ता उपलब्ध कराने गरी निजी स्रोत में प्राथमिक तृतीय तह महिला

स्वयं रेडियो हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन।

0: 飛ばしてください。
1: सूचना सूचना सूचना सुरुङ झील बेसी जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुङ क्षेत्र संचालन भइरहेको छ। निर्माण कार्य का क्रम में माथिल्लो सुरुङ ढुंगा खस्ने संभावना रहेकाले तल्लो फेरा साधन क्षेत्र में नास्ता काट्न गाई बस्तु चढ़ाउन तथा आवत जावत गर्ने सम्पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारणहरूलाई सावधानी अपनाउन हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जान देश आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखिदेश सुनील जिन देश की उपभोक्ता समिति सुनिखुंगो बाट बचाउ र बचाओ यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका यौनजन्य हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन्। हिंसा छिमेकी आफन्त साथीलाई परिचित नातेदार जोसुकीबाट हुन सक्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं। बाल बालिकाको चालचलन बानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ। त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं। बाल बालिकासँग नियमित सम्पर्क पनि गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सिटी एफएम स्टुडियो टाइम
2: 10 पीएम रात को 10 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभ